बार बंडंग पुज डंडे अखंड तेज प्रचंड ज्योतिया मन पां प्रभं सुख संता कर्ण दुर्मत धन किल बिगान आसन जय जय जगकार सिस्तियो पार मम प्रत पार जय देव खग खंड बेहंड खल दल खंड आदर नमन बार बंडंग पुज डंड तेज प्रचंड।